ब्रह्मण्यं सुब्रह्मण्य शनुतना गोविंद कृष्ण जय गोपाल कृष्ण जय गोपाल।

नहीं नहीं नहीं रक्षति दुःखं करणे नहीं नहीं रक्षति दुःखं करणे गोविंद गोविंद गोविंद।